0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी बांडवाल और मेरे साथ है यहाँ मौजूद धर्मेंद्र जी। और दोस्तों, हम लेकर आ गए आपके लिए द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम पहला अपडेट आज आपको जो देने वाले हैं वो है सेपक तकरो की दुनिया से। इंडिया हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द मेन्स क्वाड्रेंट इवेंट ऑफ सेपक तकरो आफ्टर दैट टू स्ट्रेट विक्ट्रीज इन द ग्रुप स्टेज। दिस मीन्स दैट इंडिया हैज अश्योर्ड और बीन अश्योर्ड ऑफ

0: another medal for our country at the Asian Games 2026. India defeated Vietnam in the men's quadrant Group A match of the Sepak Takraw event. They won in straight sets by a margin of 15-12, 15-17, thereby defeating Vietnam 2-0. The rules, by the way, dosto, aapko ye bhi bata de that the rules state that both the semi-finalists will get a bronze medal at least. That means, Dharmendra, Bharat ko ek aur medal aaj assure ho chuka hai.
1: Ji, aur udhar kushti se kaafi achhi khabar aa rahi hai, Sakshi. Bharat ke Nitesh Sivaj ne purushon ke Greco-Roman 97 kilogram varg ke semi-final mein shandar jeet darj karke फाइनल में जगह बना ली है और भारत का मेडल वहां पर पक्का हो गया है. उन्होंने होंगझो एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगकुयाग गानाबातार को 9-0 से हराया. इस जीत के साथ नितेश ने फाइनल में जगह बना ली और इसी के साथ भारत का 2026 एशियन गेम्स में कुश्ती का पहला मेडल पक्का हो गया है. नितेश ने इसी साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था. फाइनल में उनका सामना ईरान के मेहदी बालिहाम जेहदेह या जापान के यूरी नागाचातो से होगा. फाइनल आज के बाद खेला जाएगा और हम आपको यह भी बताएं कि पहली बार 64 साल के बाद ग्रीको रोमन किसी रेसलर ने एशियाड के फाइनल में जगह बनाई है. और कुश्ती से ही एक और अच्छी खबर तो थी, लेकिन अब थोड़ी सी उसमें गड़बड़ यह हो गई है कि मानसी अहलावत सेमीफाइनल में तो पहुंची थी लेकिन सेमीफाइनल में पराजित हो गई है. भारत की मानसी अहलावत महिला 62 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जापान की दो बार की वर्ल्ड चैंपियन नोनोका ओजाकी से 0-6 से हार गई. ओजाकी ने शुरुआत में टेकडाउन से 2 अंक लिए और फिर एक और टेकडाउन की बढ़त से 4-0 स्कोर कर दिया. उन्होंने दूसरे पीरियड में भी मानसी को अंक नहीं दिया. बाद में एक और टेकडाउन से स्कोर 6-0 कर दिया. मानसी अब रेपेचेज में खेलेंगी. यहां जीतने पर वो ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती हैं.
0: जी, और अब वॉलीबॉल का आपको अपडेट देते हैं, जहां से मैं आपको कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं देने वाली हूं, जहां पर हम आपको बता सकते हैं दैट पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया 3-0 इन द मेंस वॉलीबॉल क्वार्टर फाइनल टू एंड इंडियाज कैंपेन एट द एशियन गेम्स. पाकिस्तान टुक द ओपनिंग सेट 25-19 बिफोर एजिंग अ क्लोजली फॉट सेकेंड सेट 25-23. देन दे क्लोज्ड आउट द कॉन्टेस्ट विद एन 18-25 ड्रॉ, रादर शुड वी से दैट रिजल्टेड इन पाकिस्तान कंप्लीटली डोमिनेटिंग इंडिया इन अ स्ट्रेट सेट विक्ट्री. इंडियाज वेट for a first Asian Games medal in the men's volleyball since 1986 continues after the quarterfinal defeat.
1: और एक खबर, जैसे आपने कहा कि अच्छी खबर नहीं है, स्क्वाश में भी हमारी महिला टीम पराजित हो गई है और सेमीफाइनल का ये मुकाबला था हांगकांग के खिलाफ और भारतीय टीम इस मुकाबले में संघर्ष करती तो दिखी लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी. तन्वी खन्ना ने स्क्वाश महिला टीम इवेंट के सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ भारत की वापसी कराई. उन्होंने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हराया. उनकी जीत से भारत ने 1-1 की बराबरी हासिल की. तन्वी ने पहला गेम 4-11 से गंवाने के बाद वापसी की. उन्होंने अगले 3 गेम 13-11, 11-9, 13-11 से जीते. इससे पहले चान सिन युक ने अनहत सिंह को 3-2 से हराया. स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा और जोशना चिरप्पा को निर्णायक मुकाबला खेलना था लेकिन वहां वो पराजित हो गई.
0: जी, एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम आर्चरी वेयर वी हैव चिकिता तानीपार्थी ओपनड द इंडियाज एक्शन ऑन डे 13 ऑफ द एशियन गेम्स 2026. हाउएवर शी कंपीटेड अगेंस्ट नूरी सादिया अशरीफा इन द क्वार्टर फाइनल ऑफ द वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी. शी हैज ऑलरेडी क्लिंच्ड 2 गोल्ड मेडल्स एट द इवेंट एज पार्ट ऑफ द मिक्स्ड टीम एंड वुमेन्स टीम रिस्पेक्टिवली, बट शी डिड नॉट लुक एट अ बेस्ट टुडे एज अ सीरीज ऑफ 9s एंड 1-8 इन द फाइनल राउंड कुड ओनली टेक अ फाइनल स्कोर टू 1-43. As a result, we saw her crashing out of the Asian Games 2026 today. However, on a much more brighter and nicer note, she should be proud of her performance, having already secured 2 gold medals.
1: और एक अच्छी खबर आ रही है, बहुत ही अच्छी खबर है. भारत ने रजत पदक जीत लिया है सेलिंग में और ये जो रजत पदक है वो स्किफ इवेंट में मनु और नोबेल ने दिलाया है. ये बहुत बढ़िया खबर आ रही है साक्षी.
0: ऑफ कोर्स, गुड न्यूज देयर एंड कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम. बट क्रिकेट की दुनिया से भी धर्मेंद्र एक क्विक अपडेट अपने दोस्तों को बता देते हैं कि आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा कर अपनी जगह गोल्ड मेडल के लिए फाइनल के अंदर तय कर लिया है. यस, इन व्हाट वाज रेन अफेक्टेड मैच एंड अ शॉर्टेंड सेमी फाइनल वी सॉ बांग्लादेश सेटिंग पाकिस्तान अ टारगेट ऑफ 112 फ्रॉम 13 ओवर्स विच Pakistan was able to chase down confidently and easily by a margin of 6 wickets with 9 balls to remain. And और एक बड़ी न्यूज जो है धर्मेंद्र, वो ये है कि आज भारत और श्रीलंका भी आमने सामने होने वाले हैं दोस्तों इन द सेमीफाइनल मैच, एंड हूएवर विंस दिस गेम

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

दोस्तों ये सुनकर दिल में रंगोली और डांडिया दोनों एक साथ सज गए, है ना। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल दोस्तों, क्योंकि घड़ी के सुइयों ने बजा दिए हैं सुबह के पूरे 10 और

जाओ, त्योहार आने वाले हैं। तो चलिए इस नए महीने का स्वागत करते हैं फुल ऑन एनर्जी और खुशियों की गूंज के साथ। वैसे शुरुआत तो हो चुकी है, पर अगला जो गीत है ये भी कहीं ना कहीं त्योहारी मौसम की ऊर्जावान शुरुआत करने के लिए बिल्कुल जरूरी है।

दोस्तों जानते हैं कि सबसे बड़ा सच क्या है आज के लिए, क्योंकि आज से हर भारतीय घर की अलमारियों के ऊपर रखे उन बड़े बड़े बक्सों की शामत आने वाली है। क्योंकि अब जो है त्योहारों का जैसे मौसम आ चुका है, तो सब कहीं ना कहीं अपने पुराने पिछले साल वाली वो सिल्क की साड़ी या कुर्ते का क्या हाल है, इस विषय पर देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ निकाल कर आज अलमारी तो खाली करने वाले हैं बिल्कुल। क्योंकि अलमारी का जो ऊपर वाला रैक होता है ना भाई साहब, ऐसा लगता है जैसे कि सभी कपड़ों का पूरा पहाड़ सीधे गले मिलने आ रहा हो। और सबसे बड़ा डर क्या होता है कि शीशे के सामने खड़े होकर पेट अंदर खींचना और सोचना, क्या बिना सांस रुके या इस बार भी फिट आएगा।

या फिर सीधे टेलर अंकल के पास ऑल्टर कराने दौड़ना पड़ेगा इन कपड़ों को। लेकिन दोस्तों, कपड़ों की अलमारी के इस ड्रामे के बीच आज 1 अक्टूबर को, यानी कि आज के दिन का मेरा दिल आप सब से सिर्फ एक बात पूछना चाहता है। उम्र चाहे 15 साल की हो या 75 की, शहर चाहे कोई भी हो, लेकिन आज की जो सुबह की इस पहली गुलाबी हवा के साथ आपके जहन में वो बचपन की कौन सी सबसे प्यारी याद ताजा हो जाती है? जी बिल्कुल, जरा सोचिए, क्या वो स्कूल के इम्तिहान के खत्म होने की बेफिक्री थी, या फिर दशहरे के मेले में मिलने वाली वो 5 रुपए की पिपहरी, या फिर ननिहाल जाने का वो मीठा चाव। अपने मन में उस याद को टटोलिए, मुस्कुराइए, और हाँ, हमारे इस फोन नंबर पर कॉल कर जरूर बताइए कि आपके जहन में बचपन की वो कौन सी सबसे प्यारी याद है जो ताजा हो जाती है अक्टूबर के महीने के आने पर। वैसे नंबर तो आप सभी को पता है, फिर भी मैं बता दूं, 2213134122131341। तो दोस्तों, जब तक आप कॉल करके अपने बचपन की वो यादें हमारे साथ साझा करते हैं, तो क्यों ना अगले गीत की ओर बढ़ा जाए।

0: अरे वाह, जब पेट सहसी हो तो हाथ में चाय का कप हो या कुछ और थिरकना तो बनता ही है। फिलहाल दोस्तों, मैंने जो सवाल पूछा था कि बचपन की याद का, तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके, तो आइए सुनते कि उनकी क्या यादें हैं बचपन की।
1: नमस्कार दीदी। मैं सुबह तो माल बात कर रहा हूँ, गंगाधरपुर धामतला हावड़ा से।
2: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद आपने फोन का स्पीकर ऑन रखा है शायद। हेलो,
1: हाँ ठीक है
2: जी।
1: जल्दी दीदी, आज टॉपिक लाया हमने, ये बचपन का कौन सा याद, जब अक्टूबर महीना आते है हम लोगों का तो बेफिक्र से इंतजार में रहते थे कब पूजा आएगा, हम चार दिन बहुत मजा करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो आती थी दिवाली, हमारा सबसे मैंने याद कर लम्बे है दिवाली। उस टाइम में जब बचपन मैंने बच्चा था तो उसको मैंने पटाखा फूटने का जो आनंद मिलता था, हम सारा मैंने साल इंतजार में रहते थे कब दिवाली आएगा। दिवाली आने से जो हम जो पटाखा फूटते थे बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद एक चीज हमको बहुत अच्छा लगता था, जो सर्दी का महीना पूरा होता था तो हम उड़ाते थे पतंग उड़ाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति जब आता है हम पतंग उड़ाते थे, तो उसके महीने आने के पहले से हम सर्दी का मौसम जब पूरा हो जाता थे हम पतंग उड़ाते हैं। ये जो बचपन का जो याद मेरा मन में है, लेकिन आज तो बड़ा हो गया, काम का प्रेशर आ गया, ये सब नहीं हो पाता है, लेकिन जो बचपन का जो मैंने याद अभी भी हमारा मन से जुड़ा है, और आज भी जब छोटा छोटे बच्चों को ये सब करने को देखता है बहुत अच्छा लगता है, हमारा मैंने बचपन का याद मन ताजा हो जाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अक्टूबर से आपके बहुत सारे बचपन की यादें जुड़ा
1: है। ओके
2: जी जी जी, धन्यवाद आपसे जुड़ने के
1: लिए। एक बात, एक बात का बताऊं
2: जी,
1: विवेक अगर होते कुमार सुनो जी का गाना सुना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
2: जी जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे।
1: नमस्कार दीदी,
2: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है कि इस वक्त रेडियो सुनते हुए आपकी आंखों के सामने वो पुराना जमाना जरूर तैर गया होगा, क्योंकि मुझे याद आता है कि हमारे बचपन में अक्टूबर का मतलब होता था शाम होते ही मोहल्ले में वो लकड़ी की तलवारें लेकर दौड़ना, नए जूते की डिब्बे की खुशबू सूंघना और छत पर बैठ कर पहली बार हल्की गुनगुनी धूप का मजा लेना। ऐसी कई यादें होंगी जो आपके साथ भी जरूर है, आपके साथ अभी भी चल रही है वो यादें। तो फिलहाल दोस्तों, जब तक आप फोन करके अपनी यादों को साझा करें, तो क्यों ना अगले गीत की ओर रुक किया जाए।

0: तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके, तो आइए सुनते हैं कि उनकी कौन सी बचपन की यादें ताजा हो रही है। हेलो
1: हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: राधे राधे।
1: राधे राधे।
2: ज्योति जी, आपने तो पूरी बचपन की हमको याद ही ताजा करवा दी।
1: चलिए अच्छी बात है, किसी बहाने बचपन की यादें तो ताजा हुई।
2: और बचपन में हमारे माता पिता हमको बाजार में पटाखे किनवाते थे, नए कपड़े दिलवाते थे, ये सब हमारा पिताजी लोग जो माँ है वो सब करके लाए। और आज में भी अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी सबको अपने साथ लेकर जाता हूँ। तो और दुर्गा पूजा का इस वक्त समय है, मुझे एसजी बर्मन जी का भी आज जन्मदिन है, उनको नमस्कार करता हूँ, नमा करता हूँ। और दुर्गा पूजा जो है एसजी बर्मन के एक फिल्म है नया जमाना, उसमें एक गीत है, मैं गीत नहीं बताऊंगा नहीं तो गाने का मजा ही बिगड़ जाएगा।
1: अच्छा,
2: एक सस्पेंस है, इस गाने से ये पता चलता है कि दुर्गा पूजा आ गई है, ऐसा महसूस होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये गीत को बजाएं, ये सबको पसंद आएगा। नमस्कार
1: जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
2: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 10:26 और आप सुन रहे कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

तो दोस्तों अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे बीसवीं एशियन गेम 2026 की अपडेट्स और ठीक 10:35 में आप जुड़ चलेंगे फिर से इसी कार्यक्रम में यानी कि नॉन स्टॉप गपशप में, यानी कि बस थोड़ी देर के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए, साथ रहिए सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

0: It's time for the Asian Games 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त यहां मौजूद है धर्मेंद्र और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सुबह के 10:30 की लाइव अपडेट्स फ्रॉम द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की, जहां भारत और श्रीलंका आज है इस वक्त आमने सामने इन द सेमीफाइनल क्लैश। एंड इंडिया वॉज ऑब्वियसली पुट इन टू बैट फर्स्ट टूडे, जी हाँ। एंड बल्लेबाजी करते हुए भारत ने आज शुरुआती दौर में ही बहुत जल्दी अपने दो विकेट्स, इंपॉर्टेंट विकेट्स, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का गवा दिया वेरी अर्ली ऑन। एंड एज अ रिजल्ट दे स्टार्टेड ड्रिलिंग इन एट 24 for 2। लेकिन देन वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूरा का पूरा एक तरह से कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई टू हेल्प इंडिया सम हाउ सस्टेन themselves एंड पुट themselves इन अ कमांडिंग पोजिशन। एंड वैभव सूर्यवंशी देन वॉज एबल टू लीड इंडिया टू वर्ड्स एन इंपॉर्टेंट इनिंग्स वेरी हिट।

0: गेंदों में 38 रन्स विच इंक्लूड्स 6 फोर्स इन 2 सिक्सेस एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 190 thereby हेल्पिंग इंडिया somehow stabilize themselves at 59 runs for the loss of 2 wickets. But as I say this, Vaibhav Suryavanshi also has now gotten out. जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी got out and he was caught by Sinit Jayawardena. As a result, India now are 59 for 3 in just 6.2 overs. Dharmendra, a lot needs to be seen as to how the Indian innings will develop in the stipulated 20 overs.
1: Yeah, लेकिन तीरंदाजी से तो मिली-जुली खबर आ रही है. पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट में गणेश मणिरत्नम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका सामना कुछ ही देर में दक्षिण कोरिया के किम जोंग हो से होगा. गणेश मणिरत्नम ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के ची लुनचेन को 148-138 के अंतर से हराया. गणेश ने इस मुकाबले में सिर्फ 2 अंक गवाए. स्कोर 29-28, 29-28, 30-29, 30-26 और 30-27 रहा. हालांकि चिकिता तनिवार थी, क्वार्टर फाइनल में हार गई और एक जो मेडल की उम्मीद उनसे थी वो पूरी नहीं हो सकी. काफी नजदीकी मुकाबला रहा और इंडोनेशिया की नुरिसा दियान अशरीफा ने उन्हें हराया. और तिरंदाजी में ये जो खबर रही, ये मिली जुली खबर है
0: जी. और जूडो की दुनिया से आपको कुछ खबर दे देते हैं, जहां यामिनी मौर्य क्वालिफाइड फॉर द वुमेन्स 57 किलोग्राम्स कैटेगरी क्वार्टर फाइनल इन जूडो. लेकिन क्वार्टर फाइनल से आगे जीत पाने के बाद जब वो आगे गई तो वहां पर हमने देखा कि यामिनी मौर्य लॉस्ट वुमेन्स 57 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल टू मंगोलियाज अरियुन जया तरबिश बाई यूको. एंड दूसरी तरफ अब बात करते हैं कि शी देन मूव्ड इनटू द रेपेचार्ज वेयर शी वुड बी फेसिंग जापान्स मियो श्रीकाने फॉर अ प्लेस इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच. दूसरी तरफ भारत की तरफ से हमने देखा कि इनुनगन भी तकलबार एडवांस टू द वुमेन 70 किलोग्राम्स क्वार्टर फाइनल्स आफ्टर बीटिंग नेपाल्स पूनम श्रेष्ठ बाय इपो. शी विल टेक ऑन नॉर्थ कोरियाज मून सोंग हुई नेक्स्ट.
1: और शूटिंग से अच्छी खबर आने का सिलसिला जारी है. अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के फाइनल में जगह बना ली है. हालांकि अनीश क्वालिफिकेशन में 9वें स्थान पर रहे, लेकिन इस प्रदर्शन के बावजूद उनसे पदक की उम्मीद साक्षी तो बनी हुई है
0: जी. और कयाक की दुनिया से भी आपको कुछ खबरें दे देते हैं, जहां पर इंडिया शिखा चौहान हैज बुक्ड अ प्लेस इन द वुमेन्स कयाक सिंगल फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 10th इन द सेमीफाइनल्स. शिखा क्लॉक 246.16 सेकंड्स टू सिक्योर अ स्पॉट इन द फाइनल व्हिच विल बी बिगिनिंग शॉर्टली एट अराउंड 10:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हिच शुड बी से दैट द मैच इज ऑल सेट टू हैपन नाउ.
1: और टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के सुमित नागल चीन के यिबिंग वू से पराजित हो गए हैं. स्कोर 4-6, 4-6 रहा. हालांकि सुमित ने वापसी की भरपूर कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन भारी साबित हुए यिबिंग वू और उन्होंने इस जीत के साथ टेनिस में भारत की जो दमदार चुनौती हुआ करती थी उस पर पानी फेर दिया और टेनिस में भारत की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं
0: जी. और सेलिंग की दुनिया से आज सुबह आई सबसे बड़ी खबर भारत के लिए, जहां इंडिया सिक्योर द फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुर्सिनिकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेन्स स्किफ इवेंट. इंडिया प्रिंस कुर्सिनिकल नोबल एंड मनु फ्रांसिस क्लेम द सिल्वर. द इंडियन पेयर फिनिश सेकेंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड द गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 नेट पॉइंट्स. इंडिया रिकॉर्डेड 2 रेस wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China went on to claim the gold while Hong Kong took the bronze medal.
1: और ताइक्वांडो में भारत की रूपा बायूर महिला व्यक्तिगत पुंसे के सेमीफाइनल में 7.6100 अंक के साथ 5वें स्थान पर रही. वे फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई हैं. पुंसे में हम आपको बता दें कि खिलाड़ी अकेले कई मूवमेंट का प्रदर्शन करते हैं, इसमें किसी प्रतिद्वंदी से मुकाबला नहीं होता. प्रदर्शन का आकलन सटीकता और प्रस्तुति के आधार पर किया जाता है
0: जी. एंड जस्ट बिफोर वी रैप अप दिस अपडेट लेट्स गिव यू आल्सो वेयर इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टेबल एज ऑफ नाउ. भारत के पास इस समय कुल मिला 62 मेडल्स हो चुके हैं. भारत इस समय मेडल टेबल में 8वें स्थान पर है विद अ टोटल ऑफ 62 मेडल्स व्हिच इंक्लूड्स 10 गोल्ड 22 सिल्वर 30 ब्रॉन्ज. दैट इज ऑल दैट वी हैड इन दिस अपडेट ऑफ 10:30 AM फॉर ऑल योर लवली पीपल. हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे सुबह 11:30 बजे. फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को दीजिए इजाजत. थैंक यू, गुड बाय.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप। और दोस्तों आज हमारे शो में हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है और साथ ही साथ हमारे साथ एक नए कॉलर जुड़ चुके हैं। तो आइए सुनते हैं कि उनकी कौन सी बचपन की यादें ताजा हुई है। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं शोभी शोका बोल रहा हूँ कस्बा से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू दीदी। मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप बहुत अच्छे से टॉपिक दिया बचपन से ले जाने के लिए। थैंक यू। दीदी जो बोल रहे थे आप, जो मुझे बचपन में जो है मैं नॉस्टैल्जिक में चल गया। मैं बोलूंगा दीदी, हम लोग जब बचपन में जब थे विशेषकर स्कूल में, वहाँ पर हम लोग का 1 रुपए व 2 रुपए में हम लोग को सब कुछ मिल जाते थे गेट के बाहर। वो झालमुख बोलिए, एकदम दीदी वो आइसक्रीम बोले जो भी मिलता है सब कुछ मिल जाता है। गोला बोलिए, बर्फ का जो गोला होता है मिल जाता था, बहुत अच्छा सा लगता था। और सबसे बड़ा बेस्ट होता था हम लोग जब जो घर से जो टिफिन लेकर जाता है जो भी बोलिए, चाउमीन बोलिए घर की बनाना, चाउमीन बोलिए जो भी रोटी बोलिए जो भी, हम लोग का शेयर करके खाते थे, बहुत अच्छा लगता था उस टाइम में। और दूसरे जो बात है, हम लोग का जब छोटी छोटी होता था तो हम लोग वर्षा काल में वो हम लोग जल्दी से घर के आके बैग बैग एकदम वहां पर रख के हम लोग फुटबॉल खेलने जाते थे माठ में। वो कीचड़ में हम लोग एकदम छोटा एकदम एकदम एकदम झप झप करके खेलते थे, बहुत अच्छा लगता खेल थे। और पुकुर में हम लोग स्नान करते थे, ये बहुत अच्छा लगता था। और जो पूजा जब आते है ना, वो मंडप होता था माठ में, हम लोग को बाश में उठकर एक उठकर इधर से उधर इधर से उधर बादर वो जो बंदर होता है ना बंदर की तरह या परे वो जाते थे। वो क्लब की जो दादा था वो हम लोग को डांटते थे और हम लोग को बंदर बोलते थे। यही मैं बोलूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी मैं शेयर करके।
0: जी जी, बहुत धन्यवाद और आपकी बातें सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आज हमारे पास सब कुछ स्मार्ट है, फोन, टीवी, गाड़ियां, लेकिन वो जो 5 रुपए की पिपहरी बजाने में सुख था वो आज किसी मॉल में नहीं मिलता। जिंदगी कितनी भी तेज भाग ले, लेकिन अक्टूबर की मौसम की वो छुट्टी, जी हाँ, हम सबको कुछ पलों के लिए फिर से वही मासूम बच्चा बना देती है। तो चलिए दोस्तों, उन सुकून और यादों में फिर से नाम करते हैं ये एक प्यारा सा नगमा।

0: बिल्कुल दोस्तों, सच में इस मौसम में दिल को अलग ही पंख लग जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं।
1: हेलो, हेलो सुप्रभात, मैं बेलघरिया से शुभजीत बोल रहा हूँ।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: शुक्रिया। अभी का जैसे टाइम है दुर्गा पूजा से पहले, तो बचपन की यादों में एक चीज मुझे अभी बहुत मुझे बहुत याद आता है कि बचपन में हम लोग जब छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे पूजा के दौरान। अब पूजा और कुछ दिन बाकी है और महालय से पहले की जो वक्त है जब मतलब एग्जाम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और प्रिपरेशन चल रही है कि कितने सारे ड्रेसेस होंगे, क्या क्या शॉपिंग करेंगे, कितना जूते लेंगे, ये सब। तो और एक चीज जो हम लोग के जो बड़े हैं चाचा मामा ये लोग, जब ये लोग हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस साल क्या मिलेगा। कोई कोई तो कपड़े खरीद देते थे, कोई पैसे देते थे जिस पैसे से हम लोग जमा करके उसको पूजा के दौरान खाने खान पान में उसको
0: खर्च कर देते थे।
1: हाँ, और ये जो महालय में जो आकाशवाणी का जो एक महत्वपूर्ण रोल है, सुबह के 4 बजे जो वो जो स्रोत होते हैं
0: जी,
1: वो तो कभी खत्म, मतलब उसका जो एहसास है शायद बच्चे से बुरे सबका एक ही है। और चाहे बाकी दिनों में हम लोग लेट से उठे कुछ भी, उस दिन 3:55 पे उठना चाहिए।
0: हाँ,
1: ये जो वक्त है और सुबह का जो वक्त है, शायद ये चीज ऐसा है कि हमारे जिंदगी के साथ इतने जुड़े हैं कि ये कभी जाएगा नहीं। और जब हम लोग दुर्गा पूजा शुरू हो जाता है तो हम लोग चाहते अभी भी, जैसे मैं इस वक्त भी सोच रहा हूँ कि अगर आ गया तो कैसे निकल जाएगा दिन, पता नहीं चलेगा। तो ये जो आ रहा है

0: है ये जो चीजें हैं वही अच्छा लगता है। और एक बार आ गया तो पता नहीं सप्तमी अष्टमी नवमी होके दशमी निकल जाए,
1: मतलब
0: जी। और इस साल फिर भी दुर्गा माँ ने एक दिन ज्यादा दे दिया कि चलो सप्तमी ले लो दो दिन, हैव फन। तो वो चीज बचपन का वो चीज, और हम लोग को लगता है हम लोग जो बचपन कट चुके हैं, ये जो समय था वो कुछ अलग ही था। हम लोग का पास ना एक फोन था ना कोई गैजेट था, हम लोग जो मेले में जो काठ के चीज या प्लास्टिक के जो चीजें हैं, जो टॉयज है, उसमें इतना खुश हो जाते थे कि अगर साल में एक भी मिल गया तो ही वो ही बहुत कुछ है। तो वो चीज तो हमको लगता है कि अगर एक टाइम मशीन होता कि हम लोग वापस चले जाते तो कितना अच्छा होता।
1: जी।
0: तो वही अभी दुर्गा पूजा के टाइम में क्योंकि शरद काल आ गया है तो ये जो एहसास है। और एक चीज में नोटिस, हम सभी नोटिस करते हैं जब हम लोग आकाश में देखते हैं जो ब्लू स्काई, वो चीज कहीं नहीं मिलेगा।
1: हाँ।
0: मतलब उसमें एक अलग ही एहसास है।
1: बिल्कुल
0: जी। तो यही मेरा अभी का जो टॉपिक है आज का,
1: जी
0: आज का याद है। और शुक्रिया आपका कि आज ये बचपन की यादें को ताजा कर लिया आपके दे रहे।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैंने भी अपने बचपन को यादें जो है उसकी भी ताजा हो गई।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, घड़ी की सुई, जी हाँ, घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि ये जो कार्यक्रम है अपने समापन की ओर बढ़ चला है। तो दोस्तों, अलमारी की छटाई का माहौल बन चुका है और अक्टूबर का पहला दिन अपनी पूरी रंगत भी दिखा चुका है। तो आज अपनी अलमारी साफ करते हुए कपड़ों के साथ साथ मन की पुरानी उलझनों को भी बाहर का रास्ता दिखाइए। और जो सवाल मैंने बचपन की यादों का पूछा था, उस याद की मिठास को पूरे दिन अपने चेहरे की मुस्कान बनाए रखिए। घड़ी ने बजा दी है, जी हाँ, 11 बजने वाले हैं और मुझे यानी आपकी अपनी दोस्त ज्योति को नॉन स्टॉप गपशप से अब विदा यानी कि इजाजत लेने का वक्त आ गया है। यानी कि कल की छुट्टी को पूरी मस्ती से जिए, क्योंकि मुस्कुराते रहे और साथ ही साथ सुनते रहे बेहतरीन धुने। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ आप सभी से मैं अब इजाजत चाहती हूँ, लेकिन जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों, मैं तो जा रही हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। और ठीक 11:10 पर मैं आऊंगी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद लेकर, जी हाँ, 100.1 FM गोल्ड पर। तो बस थोड़ी ही देर के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत और इस प्यारे से धुन का यानी कि प्यारे से गीत का आनंद लेते रहिए।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया। नमस्कार, आईजी नगोया एशियन गेम्स की अपडेट के साथ मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ हैं साक्षी मंडवाल। अभी अभी ये खबर आ रही है कि एक और ब्रॉन्ज मेडल भारत का पक्का हो गया। तीरंदाजों ने कल गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई थी और अभी अभी एक ब्रॉन्ज मेडल गणेश मणिरत्नम ने दिलाया है। तीरंदाजी में व्यक्तिगत जो इवेंट है कंपाउंड मुकाबला, उसमें उन्होंने अभी अभी गोल्ड मेडल जीता है। गणेश ने जबरदस्त फॉर्म दिखाई है इस मुकाबले में। 15 में से 14 निशाने परफेक्ट रहे और परफेक्ट 10 का उन्होंने स्कोर बनाया। गणेश मणिरत्नम ने यह मुकाबला 149-144 के बेहद आसान अंतर से जीता। हम आपको बताएं कि गणेश सिर्फ 20 साल के हैं। उन्होंने ट्रायल में ओजस देवतले को पीछे छोड़ा था। ये गणेश का पहला एशियन गेम्स है।
1: Right, on the other side, we now bring to you the news from the world of cricket, where India is up against Sri Lanka in the semi-final match today, and India, having been put into bat first today, was able to put on a total of 169 for the loss of 7 wickets in 20 overs, thanks to a very important and very resourceful contribution by Ishan Kishan, who put in 80 runs in 46 balls at a strike rate of 173.91, which included 4 fours and 5 sixes, when at one stage India was reeling at 87 for 4. It was a very confident and a very important contribution, the runs that came in from the bat of Ishan Kishan. And agar Sri Lanka ki baat kare to Sri Lanka ke bowlers ki taraf se

0: एक ऑल राउंडेड परफॉर्मेंस आज हमें देखने को मिला, जहां पर तरेंदु रत्नायके ने दो विकेट्स लिए, सहान अर्चनजिंगे ने दो विकेट्स लिए, वहीं वनुजा साहन ने एक विकेट लिया, लसित क्रूसपुल ने एक विकेट लिया और फर्नांडो ने भी एक विकेट लिया. सो वेल राउंडेड ऑल राउंडेड एफर्ट फ्रॉम द श्रीलंकन बोलर्स, बट नाउ श्रीलंका नीड्स 170 इफ दे वॉन्ट टू गो अहेड एंड विन दिस मैच अगेंस्ट इंडिया. द चेज कमिंग अप नेक्स्ट ऑल्सो.
1: और साक्षी, स्क्वाश से अच्छी खबर है, जहां भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है. हालांकि सेमीफाइनल में भारतीय टीम को उम्मीदों के विपरीत 1-2 से हार मिली. पहला मैच अनाहत सिंह ने चान सिन युक के खिलाफ 2-3 से गवाया. स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा. तन्वी खन्ना ने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हराकर टीम को वापसी कराई. तन्वी ने मैच को 13-11, 11-9, 13-11 से वो जीता. लेकिन निर्णायक मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा होजे लोक से लगातार गेम में 4-11, 7-11, 9-11 से हार गई और भारतीय टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.
0: जी, एंड इन द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग, इंडियाज अनीश भानावाला हैज मेड इट थ्रू द मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 9th इन द क्वालिफिकेशन विद अ टोटल ऑफ 576 पॉइंट्स. भानावालास फाइनल सीरीज शील्डेड जस्ट 94, बट ही अर्नड अ प्लेस इन द फाइनल आफ्टर साउथ कोरिया हैड 3 शूटर्स फिनिश इनसाइड द टॉप 8. With only 2 shooters from each country allowed to qualify, Mahanawala moved into the final. It will be India's final shooting event at these Asian Games, with Bhanwala now carrying the country's last medal chance in this discipline. And that match is scheduled for noon today, Indian Standard Time.
1: Yes, and yesterday, 3 gold hat-trick, जो तीरंदाजों की हम बात कर रहे थे, आज एक ब्रॉन्ज भी आया है. और अब हम आपको ये बताएं कि टेनिस में एक निराशा फिर से हाथ लगी है. पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के सुमित नागल चीन के यिबिंग वू से 4-6, 4-6 से हारकर बाहर हो गए. नागल के इस हार के बाद 40 साल बाद यह पहला मौका है जब भारत को टेनिस में कोई पदक नहीं मिला और खाली हाथ लौटना पड़ रहा है.
0: Right, in the world of taekwondo also, we can give you a quick update that India's campaign in the women's individual Pumse event in taekwondo ended as Rupa Beor bowed out of the semi-final. She finished with 7.6100 points. This was not enough to finish amongst the 8 stars who qualified for the final.
1: और कुश्ती की बात करें तो भारत के लिए मिलीजुली खबर है. नितेश सिवाच ने पुरुषों के ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर एक पदक पक्का कर लिया है. नितेश ने हांगझोउ एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगखुयांग गनबातार को सेमीफाइनल में 9-0 से हराया. इस जीत के साथ नितेश ने भारत का 2026 एशियन गेम्स में कुश्ती का पहला मेडल पक्का कर दिया. नितेश ने इस साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था.
0: Right, and as we wrap up this update, a quick look on the medal table also, with India standing still on the 8th spot in the medal table with a total of 63 medals, which includes 10 gold, 22 silver and 31 bronze. Here's hoping that the Indian medal tally carries on increasing and that India finishes on a good spot. For now, it's me, Sakshi Mandwal, and Dharmendra saying goodbye to all our listeners. We'll be joining you once again at 12:30 p.m. in the afternoon with the updates of the ongoing Asian Games 2026. Thank you for tuning in. Goodbye.
2: Asian Games. Gaane Bajuk on a radio. Shuncho 107 FM Rainbow. Shat Shure Sharadi. Shat Shure Sharadi.
3: Kalo Joy Bangla Ganer Dhara Chhuye Jak Mon. শুনছেন গানদোরিয়া 107 FM রেইনবোতে. গানদোরিয়া, গানদোরিয়া, ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন.
4: ফিরে এলাম এশিয়ান গেমসের আপডেটের পর 107 FM রেইনবোয়ে. শুনছেন গানদোরিয়া. বৃহস্পতিবার মানে লোকগান লোকসুরে ভেসে বেড়ানো. সঙ্গে রয়েছে অমালিকা আর মধুমিতা, অবশ্যই আজকে এস টি বর্মন.

0: who made 38 runs in 21 balls with a strike rate of 180.95, thereby helping India put on 169 for the loss of 7 wickets in 20 overs. So congratulations to all the fans of cricket, to the Indian men's cricket team, because from here now India is set to meet Pakistan on this coming Sunday in the Asian Games 2026 for the final that will be happening in between India and Pakistan. Dharmendra.
1: Yeah, and today hockey ka bhi to mukabla hona hai Bharat aur Pakistan ke beech mein, wo bhi kafi dilchasp hoga, lekin hum aapko abhi ki ek jankari de dein ki Bharatiya purush क्वांटिटी टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेपेक्टेक्रा के आखिरी ग्रुप मैच में वियतनाम को 2-1 से हराया और स्कोर रहा 10-15, 15-13, 15-7। पहला सेट गंवाने के बाद दूसरे सेट में 4-8 से पीछे थी भारतीय टीम और फिर दूसरा सेट जीता, फिर तीसरा सेट आसानी से जीतकर ग्रुप टॉप किया और सेमीफाइनल में जगह बना ली, यानी पदक यहाँ पक्का हो गया है
0: जी। और शूटिंग की दुनिया से आपको बता दें दोस्तों कि शूटिंग का ये इवेंट अब कम्प्लीटली समाप्त हो चुका है। इंडिया का एशियन गेम्स में शूटिंग इवेंट के अंदर का सफर भी समाप्त हो गया। अनिश बनवाला हैज बीन एलिमिनेटेड इन द 7th प्लेस इन द मेंस 25 मीटर रैपिड पिस्टल फाइनल। अनिश शॉट अनदर 4x5 टू फिनिश विद 11 हिट्स फ्रॉम 15 शॉट्स, ऑल्दो दैट स्कोर वाज टाइड फॉर द 3rd बेस्ट एट द स्टेज, हिज लोअर क्वालिफिकेशन स्कोर मेंट ही लॉस्ट द टाई ब्रेक एंड वाज रैंक 7th। विद दिस इंडियाज कैंपेन इन शूटिंग also comes to an end and India finished with a total of 15 medals in shooting, 3 gold, 8 silver, 4 bronze.
1: लेकिन निशाना साधने के एक और खेल तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार अच्छा है और जारी है वो प्रदर्शन। कल 3 गोल्ड मेडल जीते थे, आज एक ब्रॉन्ज मेडल आया है और गणेश ने ये ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। 15 में से 14 निशाने उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में परफेक्ट 10 के साधे और गणेश मणिरत्नम ने यह मुकाबला 149-144 के बेहद आसान अंतर से जीत लिया और इस मुकाबले को जीतकर उन्होंने एक और मेडल भारत के लिए पक्का कर दिया है। तो इस तरह से तीरंदाजी में लगातार अच्छी खबर आ रही है और स्क्वाश से भी अच्छी खबर है जहां भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। हालांकि सेमीफाइनल में भारतीय टीम को उम्मीदों के विपरीत 1-2 से हार मिली हांगकांग के खिलाफ। पहला मैच अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ 2-3 से गवाया, स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा। तन्वी खन्ना ने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हराकर टीम को वापसी कराई। तन्वी ने मैच को आसानी से जीता लेकिन निर्णायक मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा होजे लेक से हार गई और इस तरह से भारत को कांस्य से संतोष करना पड़ा।
0: जी, एंड अ क्विक रैप अप ऑन द मेडल टेबल आल्सो एज टू हाउ इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टैली। वी विल नाउ टेल यू दैट इंडिया इज प्रेजेंटली प्लेस्ड एट द 8th पोजीशन विद अ टोटल ऑफ 62 मेडल्स, जिसमें 10 गोल्ड है, 21 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज आ चुके हैं। जिसमें आपको बता दें आर्चरी की दुनिया से अभी तक 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज आया, एथलेटिक्स में 1 गोल्ड, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज, बैडमिंटन में 1 ब्रॉन्ज, बॉक्सिंग में 3 ब्रॉन्ज मेडल्स, क्रिकेट में 1 गोल्ड आया है, कबड्डी में 2 गोल्ड आ चुके हैं, कुराश में 1 ब्रॉन्ज आया है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में 1 ब्रॉन्ज आया है, रोइंग में 1 ब्रॉन्ज आया है, शूटिंग में 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, सॉफ्ट टेनिस में 1 ब्रॉन्ज, स्क्वॉश में 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, टेबल टेनिस में 1 ब्रॉन्ज, वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर, रेसलिंग में 1 ब्रॉन्ज और वुशू में भी 1 सिल्वर। विद दिस इंडिया प्रेजेंटली प्लेस्ड एट द 8th पोजीशन ऑन द मेडल टैली। फॉर मी, फॉर नाउ इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड धर्मेंद्र सेइंग गुड बाय टू ऑल आवर लिसनर्स। हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे दोपहर के 1:30 बजे, ब्रिंगिंग यू ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।
2: गाने बाजू ऑन एयर रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो, सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन।
3: কালো জয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন, শুনছেন গানদরিয়া 107 FM রেইনবোতে। গানদরিয়া, গানদরিয়া, ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন।
4: 28th এশিয়ান গেমসের আপডেট নিয়ে আমরা শুনছিলাম এতক্ষণ এবং তারপর ফিরে এসেছি আবারও 107 FM রেইনবোয় গানদরিয়া নিয়ে অম্বালিকা আর মধুমিতার সাথে। আপনি শুনছেন বৃহস্পতিবারের ফোক বেস্ট, অর্থাৎ একেবারে মাটির সুরে ভেসে যাওয়া, সেই সুরে আমরা ভেসে যাচ্ছি। আজ এস ডি বর্মনের জন্মদিন, এস ডি বর্মন এবং ফোক, এই ব্যাপারটা আমরা আজকের ফ্লেভারে দেখার চেষ্টা করছিলাম, সেখানে ফিরবো

0: नमस्कार, एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया के अपडेट्स के साथ मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ हैं साक्षी मंडवाल। शुरुआत करते हैं हॉकी से, क्योंकि ये मुकाबला पुरुष वर्ग में अभी सेमीफाइनल का चल रहा है। भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं और जो अभी के हालात हैं, जो स्थिति है, उसमें भारतीय टीम 2-0 से आगे चल रही है और दोनों गोल भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं पेनल्टी कॉर्नर पर। 5वें और 13वें मिनट में उन्होंने ये गोल किए। हम आपको बताएं कि यहां जीतने वाली टीम न सिर्फ फाइनल में पहुंचेगी बल्कि स्वर्ण पदक जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी करेगी। और हम आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि भारत ने पूल ए में अपने सभी 5 मैच जीते हैं। टीम ने इन मुकाबलों में 49 गोल किए और सिर्फ 4 गोल उसके खिलाफ हुए। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह 9 गोल के साथ टॉप स्कोरर हैं। कप्तान हरमनप्रीत सिंह आज के 2 गोल के साथ उनसे आगे जरूर निकल जाएंगे। 8 गोल अभिषेक ने भी किए हैं। भारत की टीम टूर्नामेंट में अब तक अजय है। महिला वर्ग में भारतीय टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है जहां उसका मैच चीन से होना है। इस मैच की विजेता टीम को भी ओलंपिक में जगह मिलेगी।
1: जी, एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नाउ द बिग न्यूज दैट द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम डिलीवर्ड टुडे वाज टू डिफीट श्रीलंका इन द इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल क्लैश व्हिच हैज नाउ पुट इंडिया इन अ वेरी कमांडिंग एंड अ गुड पोजीशन ऑफ कमिंग अप फेस टू फेस अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फाइनल्स ऑफ द एशियन कप एशियन गेम्स 2020 6 that is all scheduled to happen this Saturday. Well, just to give you a quick update on that, again, India delivered a phenomenal performance in the Asian Games against Sri Lanka, setting a challenging target of 170 runs. Sri Lanka struggled dramatically, getting bowled out for a mere 45 runs thanks to exceptional bowling by Jasprit Bumrah and Akshar Patel. Ishan Kishan's impressive innings of 80 not out underpinned the team's success. India are now geared up to come face to face against Pakistan for the coveted गोल्ड मेडल मैच, ऑल सेट टू हैपन दिस सैटरडे।
0: सेपक टेकरा में मेंस क्वाड्रेंट इवेंट में मेडल पक्का हो गया है। भारत ने आखिरी ग्रुप मैच में म्यांमार को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया ने ग्रुप के 3 मैच जीते और अजय रहते हुए ग्रुप में टॉप किया।
1: जी, और स्क्वाश में को बता दें कि इंडियन मेंस स्क्वाश टीम आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अ क्रूशियल सेमीफाइनल अगेंस्ट मलेशिया। अभय सिंह विल लीड इंडियाज चैलेंज इन द ओपनिंग मैच अगेंस्ट ईएनयू। द मलेशियन हैड बीटन अभय सिंह अर्लियर 3-0 इन द मेंस इंडिविजुअल फाइनल अ कपल ऑफ डेज अगो। अभय के पास अब पूरा मौका है कि इस बार वो शुरुआत जीत

0: के साथ करी अगेंस्ट हिज मलेशियन अपोनेंट बिकॉज विद दिस मैच एंड ऑल्सो इन द ओवरऑल सिनेरियो इंडिया स्टैंड टू अ चांस टू डिफीट मलेशिया इन द सेमीफाइनल्स इन स्क्वाश टुडे एंड देयर बाय ऑल्सो सिक्योर अ मेडल।
1: और उधर तीरंदाजी में आज भारत ने चौथा मेडल जीता। कल के 3 गोल्ड के बाद आज गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के कंपाउंड इंडिविजुअल के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उन्होंने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 के अंतर से हराया। यह एशियन गेम्स में 20 वर्षीय मणि का दूसरा मेडल है।
0: Right, and now let's also talk about how the day so far has been for India overall also in terms of the way. So taekwondo mein aapko bata de that India ka campaign in the women's individual Pumse event in taekwondo ended today as Rupa Bayer bowed out of the semi-final. She finished with 7.6100 points. That was not enough to finish amongst the 8 stars who qualified for the final.
1: Shooting mein men's 25 meter rapid fire pistol final mein Bharat ke Anish Bhanwala 7th sthan par rahe. Iske saath hi Asian Games mein Bharat का शूटिंग अभियान खत्म हो गया है। अनीश ने एक सीरीज में 5 में से 4 हिट किए। उनके कुल 15 शॉट में 11 हिट रहे। इस स्कोर के साथ वे उस समय तीसरे स्थान के लिए बराबरी पर थे। हालांकि टाई होने पर क्वालिफिकेशन का स्कोर देखा गया। क्वालिफिकेशन में अनीश का स्कोर कम होने के कारण वे टाई ब्रेकर में पीछे रह गए और 7वें स्थान पर रहे। इसके साथ 3 गोल्ड 8 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 15 पदक जीतकर भारत का शूटिंग अभियान खत्म हो गया। भारत ने पिछले एशियन गेम्स के मुकाबले 4 स्वर्ण समेत 7 कम पदक जीते।
0: जी, कयाक में आपको बता दें कि इंडिया शिखा चौहान फिनिश 7th इन द वुमेन्स कयाक सिंगल फाइनल आफ्टर क्लॉकिंग 193.31 सेकंड्स। शिखा वाज 7th अमंग द 8 फाइनलिस्ट इन द कनू स्लालोम इवेंट।
1: और कुश्ती से खबर यह है कि पुरुषों की ग्रीको रोमन शैली के 97 किलो वर्ग के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए नितेश सिवाच का सामना जापान के नागा जातो युकी से होगा। इससे पहले नितेश ने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर एशियन गेम्स में भारत के लिए कुश्ती में 1 पदक पक्का कर लिया।
0: राइट, एंड विद दैट वी कैन आल्सो टेल यू दैट द वे द इंडियन स्टैंड राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन द 8th पोजीशन इन द मेडल टेबल एंड वी आर होपिंग दैट फ्रॉम हियर ऑन द इंडियाज पोजीशन ऑन द मेडल टेबल गोज on to increase, but that will only be decided in the coming days and for the time to come. He is hoping that India is able to better that medal tally. So far we are sitting with a total of 61 medals, which includes 10 gold, 21 silver, 30 bronze, and that leaves India on the 8th position in the medal table. For now, this is me, Sakshi Mandwal, and Dharmendra saying goodbye to all our listeners. Lekin aap kahin mat jaiyega, dopahar ke 3:30 baje mein ek baar fir se aapse karenge mulaqat with all the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Thank you so much for tuning in. Goodbye.

0: बहुत सारे प्यार के साथ आपकी अपनी आरजी दोस्त सुलक्षणा पर्वत आप सभी का सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के रियल रेडियो पर बहुत ही खास प्रोग्राम परियोजना प्रस्तुति में स्वागत कर रही है।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: ऐसा है दोस्तों कि आज परियोजना प्रस्तुति में एक विशेष योजना के बारे में आपसे कई सारी बातें साझा करूंगी और उसका नाम है, सुना भी होगा आपने, नेशनल बैम्बू मिशन, जिसे हम ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके कई सारे फायदे भी हैं। इस मिशन से संबंधित अगर आप बातें सुनेंगे तो हो सकता है कि ये आपके भी काम आ जाए। इसकी शुरुआत पहले 2006-07 में शुरू हुआ था, फिर 2018-19 में इसे रीस्ट्रक्चर्ड करके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया।

0: गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर चलाता है इसे। अब जाहिर सी बात है कि कोई योजना होगी तो उसके पीछे उद्देश्य भी होगा, तो उद्देश्य की बात करूं तो सबसे पहले खेती बढ़ाना। जंगल के बाहर किसान के खेत, घर, बंजर जमीन, नहर किराने जो किनारे जो जगह बची होती है वहां बांस की खेती बढ़ाना ताकि किसान की इनकम बढ़े। पोस्ट हार्वेस्ट सुधार की भी बात है इसमें। खेती के पास ही जो है प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रीटमेंट प्लांट, सीजनिंग प्लांट बनाना। छोटे एमएसएमई लेवल पर अगरबत्ती, फर्नीचर, कपड़ा, खाना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे प्रोडक्ट्स तैयार करना। बाहर से बांस मंगवाने बंद करके देसी बांस को इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना। स्किल ट्रेनिंग की भी बात है इसमें। किसान, कारीगर, महिलाओं को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। अब फायदे किसको मिलेंगे ये भी एक बहुत अहम बात है। छोटे और सीमांत किसान, जमीनी मजदूर, महिलाएं, कारीगर सबको सीधा फायदा। टारगेट है 1,00,000 हेक्टेयर में प्लांटेशन और 4,000 ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूनिट जो है कला इस खोला जाएगा। और अभी तक 24 राज्यों में 60,000+ हेक्टेयर प्लांटेशन, 528 प्रोसेसिंग यूनिट और 130 बाजार हब बन चुके हैं। कैसे काम करता है ये भी एक सवाल होगा आपके दिमाग में, तो बता दूं कि सेंटर स्टेट 60:40, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10, यूटी और अन्य केंद्र जो है वो उसके उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 100% जो है इसमें केंद्र सहायता करता है। और फोकस जो है वो नॉर्थ ईस्ट प्लस एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। खास बात है कि 2017 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से बांस के पेड़ की डेफिनेशन से जो निकल के बाहर आया है कि अब किसान बिना परमिट के अपने खेत का जो बांस काट कर बेच सकता है। तो आज इतनी सारी बातें आपसे मैंने साझा किया। और अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको अपने जिले के हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ऑफिस nbm.nic.in पर जाना होगा।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।
0: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 FM रेनबो पर हाजिर है आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका ही नून शो, स्पेशल नून शो, तीन का तड़का, हैशटैग दिल धड़का, यानी कि सुलक्षणा जो अपने अंदाज में कहती है कि तीन का तड़का, यानी कि ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम, और जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि जब दोपहर ढलने लगता है शाम की ओर तो ये समय होता है जब हम लेकर आते हैं आपके लिए म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। तो पहला गाना आप सभी के लिए बजरंगी भाईजान से। कौन सा गाना अजी, गाना क्या सुनना, सुनने पर आप खुद गुनगुनाने लगेंगे।

0: स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 3:11 और 55 सेकंड एंड आई नो यू आर लविंग द शो. और ऐसा होना भी चाहिए ना, जहां कनेक्शन होता है हार्ट टू हार्ट, तो दिल जो है ना वो बस यही चाहता है कि 107 एफएम रेनबो सुनते रहे. तो आपको बता दें कि ये गाना जो आपने सुना आतिफ असलम की आवाज में, इसे हमने लिया था फिल्म बजरंगी भाईजान से. अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे कलमबद्ध किया था और संगीत का जादू था प्रीतम का. एंड द नेक्स्ट ट्रैक आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत, यू आर माई लव. ये मतलब मैं कह रही हूं ना, मतलब आप सभी से तो हमें प्यार है ही है, लेकिन ये अगले गाने का बोल है. ठीक है,
1: आइए.

इस खूबसूरत से गीत को आपने सुना कुणाल गाजावाला, नीरज श्रीधर, राजेश, अलीशा चिनॉय और मेघा की आवाज में। फिल्म का नाम ऑल द बेस्ट, लिरिसिस्ट कुमार, कंपोजर प्रीतम। और इसी के साथ मतलब कुछ बॉलीवुड गपशप भी तो होनी चाहिए, कुछ अपडेट भी आपको दे दूं। तो आपको बता दूं कि अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होने जा रही है, जिसकी एडवांस बुकिंग ने शानदार कमाई की है। एक और खबर बता दूं आपको, प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने कंफर्म किया है कि उनकी मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 3 साल 2028 में रिलीज होगी, यानी कि एक लंबा समय है और उसके लिए हमें और इंतजार करना है। ऐसा है कि इंतजार का फल मीठा होता है, ऐसा हमने सुना है, आपने भी सुना होगा। वैसे फिल्म कैसी होगी ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अगला गाना जो आप सुनेंगे वाकई कमाल का है, गजब का दिन। दिल जंगली से ये गीत आप सुनेंगे, तनिष्क बागची और अराफात ने इसे कलमबद्ध किया है, और तनिष्क बागची की संगीत है और आवाज है जुबैन नौटियाल की।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 3:22:53 और फिलहाल आप ट्यून कर रखे हैं म्यूजिकली योर्स वाला चैनल यानी कि 107 एफएम रेनबो और कनेक्टेड हैं दिल से दिल तक। और फिलहाल आपके साथ इस सफर में है आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है दोस्तों कि बॉलीवुड स्टार्स सेलिब्रिटीज अगर पब्लिक प्लेस पे दिखते हैं ना तो एक सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा न्यूज बन जाता है, देखने की एक खुशी होती है। फिर वो क्या पहने नहीं पहने ये भी बहुत मायने रखता है ना। तो चलिए इसी सिलसिले में अगला जो न्यूज में आपसे शेयर करूंगी बॉलीवुड वाला न्यूज तड़का, ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में लाल बालों और स्टाइलिश अंदाज में एयरपोर्ट पर नजर आई, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। और फिलहाल अगला ट्रैक आप सभी के लिए अरिजीत सिंह और पलक मुचल की आवाज में फिल्म रुस्तम से मनोज मुंतशिर ने इसे कलमबद्ध किया है, जीत गांगुली ने संगीतबद्ध किया है और आवाजें अरिजीत की है और पलक की है।

आपको बता दूं दोस्तों, 3:30 बजे से आप सुनेंगे NCERT का एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, और फिलहाल जो समय शेष बचा है उसमें क्यों ना हम और आप सुन लें मिलकर फिल्म शेरशाह से उस गीत को जिसे आप सुनेंगे जुबेर नौटियाल और आशीष कौर की आवाज में, गीतकार संगीतकार तनिष्क बागची, और इसको सुनते सुनते रुख करेंगे NCERT प्रोग्राम की ओर।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
1: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गांवढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
1: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ाबम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
2: बन बगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
1: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओ, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
2: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
1: श्रोताओ, मेघालय यानी मेघों का घर
2: जी।
1: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसे

0: इन वानियांग।
1: किसेन वानियांग, एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
0: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
1: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं, अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है
0: जी।
1: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देखकर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
0: श्रोताओं, कल्पना कीजिए बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि चार बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी, नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने दो रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
1: और किसेन ने श्रोताओं दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था
0: जी।
1: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
0: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
1: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
0: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
1: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
0: जी।
1: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
0: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि चार बच्चों का जीवन बच गया।
1: श्रोताओं, किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है
0: जी।
1: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
0: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो, तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
1: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है,
0: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
1: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने चार बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
0: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
1: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम तीन बातों को जरूर याद रखें
0: जी।
1: तो पहली बात,
0: संकट में घबराएं नहीं।
1: दूसरी बात,
0: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
1: और तीसरी बात,
0: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम
0: जी। और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
1: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी
0: जी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है।
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी।
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे।
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे।
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी।
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर।
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी।
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती।
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की।
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
5: ना नहीं,
4: अरे
5: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
6: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
4: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
7: प्लीज मेघा,
6: दिखा दो।
4: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं। चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी। चलो चलो चलो चलो चलो।
8: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
9: बहुत अच्छी।
10: मैडम, मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
11: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
11: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
11: जी
6: मैडम, आप ही कहते हैं इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
6: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
11: लीजिए मैडम।
3: हाँ, इसको खोलते हैं।

0: अरे वाह, ये तो एक किताब है।
1: अरे किताब भी नहीं है।
0: हाँ, शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता।
2: वाह
3: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
0: मेघा, ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
3: सैनिकों के बारे में?
1: सैनिकों के बारे में है।
4: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
0: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
3: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है। वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
0: अच्छा।
3: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
0: वाह,
4: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
0: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
3: सैनिकों को तो बात करनी होती होगी। बहादुर है हमारे सैनिक।
4: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा, मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
5: मुझे भी।
6: इसके बाद में
4: नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
3: हाँ हाँ, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
4: पर मेघा, इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
0: मोहित, एक मिनट, एक रास्ता है।
4: रास्ता है?
0: मेघा, क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना? अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
3: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
0: ठीक है, तो बच्चों, सोमवार को नंदनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
3: जी मैडम।
7: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
3: जी मैडम।
0: अच्छा पहले ये बताओ, कैसी लगी किताब?
3: मैडम, बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
0: क्या बात है।
4: अच्छा मेघा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
3: बताती हूँ। सुनो, परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
4: वाह।
0: अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
3: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
0: शाबाश।
3: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
4: मेघा, ऐसा क्या किया था उन्होंने?
3: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
8: ओ मैडम जी।
0: जी मोहन भैया, क्या बात है? आ जाइए आ जाइए।
8: मैडम जी, आपसे कोई मिलने आए? कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
0: ओ हाँ हाँ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
8: ठीक है जी।
0: बच्चों, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
3: जी मैडम।
0: मेघा, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
9: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
4: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह,
1: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
10: मोहित, लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
0: चुप, एकदम शांत। बच्चों, ये है मेजर अशोक।
11: नमस्ते सर।
12: नमस्ते बच्चों।
0: ये भारतीय सेना में अफसर।

0: आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं क्यों मेजर आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
1: जी मैडम।
2: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
1: धन्यवाद सर।
2: सबसे पहले तो मेघा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
1: धन्यवाद सर।
2: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
1: सर, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
2: बिल्कुल ठीक बच्चों, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
0: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
2: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
3: एक हिंदुस्तान।
2: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे यह बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को यह नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
4: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
5: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ?
6: मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद।
2: दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
7: शाबाश जांबाजू, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, ये काम करो। फायर, फायर।
2: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
7: सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए।
2: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
7: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं।

0: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही दो लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
1: सर, सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण घिर गए हैं, पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे।
0: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
1: जवानों, आगे बढ़ो, एक दुश्मन बचना नहीं पाए, आगे बढ़ो, फायर!
0: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे।
1: बाला सिंह, मैं तुम्हारी वैसे भरता हूँ। Keep on firing, keep on firing, छोड़ना नहीं मोर्चा, कोई यहाँ से निकलेगा नहीं, हम एक-एक को मार के छोड़ेंगे। Keep on firing!
0: उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भर आया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी, जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्यूनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
1: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट दैट वी ब्रिंग टू यू एट दिस आवर। घड़ी में बज रहे 2:30। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ हैं यहां पर धर्मेंद्र। सबसे पहले खुशखबरी के साथ इस अपडेट की शुरुआत करते हैं कि स्क्वॉश में इंडिया हैज क्लेम्ड द ब्रॉन्ज मेडल। यस, यू हर्ड मी राइट ओवर देयर, द इंडियन टीम हैज क्लेम्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द स्क्वॉश इवेंट। हमने देखा कि वी सेंथिल कुमार लॉस्ट 1-4 टू अमीशन राज चंद्रन इन द डिसाइडिंग मैच ऑफ द मेन्स टीम सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। वी सेंथिल कुमार वन द ओपनिंग गेम 12-10, but Malaysia's Amishan Raj hit back to take the next three games 11-6, 11-8, 11-9. Earlier in the day, in the same event, we saw in the earlier matches that Malaysia took the early lead, jahan India lost the opening match of the men's team semi-final with Abhay Singh going down 0-3 to Ian Yong. The Malaysian won all three games 11-8, 11-8, 11-8 in just 27 minutes, giving Malaysia an early 1-0 lead. Then we saw Veer Chautrani helping India make a recovery back into the second match, thereby leveling the scores 1-1, because Veer Chautrani beat Sanjay Jiwa 3-0. And finally, we saw that B. Senthil Kumar went down to lose the game, and as a result, India had to settle in with the bronze.
3: उधर कुश्ती से भी अच्छी खबर है। भारत के नितेश सिवाच ने पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको-रोमन वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया है। उन्हें फाइनल में जापान के यूरी नाकाजातो ने फाइनल में 4-0 से हराया और गोल्ड अपने नाम किया। नाकाजातो ने मुकाबले में 4-0 की बढ़त बनाई। नितेश ने पिन से बचाव किया, लेकिन जापानी पहलवान ने उन्हें वापसी का मौका नहीं दिया। नाकाजातो ने मैच की रफ्तार अपने नियंत्रण में रखी और गोल्ड जीता, और इस सिल्वर के साथ भारतीय कुश्ती दल ने अपने अभियान की शुरुआत पदकों के साथ कर दी है। लेकिन ग्रीको रोमन रेसलिंग में एशियन गेम्स गोल्ड के लिए भारत का इंतजार जारी रहा। हम आपको बताएं कि 64 साल बाद कोई भारतीय पहलवान फाइनल में पहुंचा था, और 1962 में मालवा सिंह और गणपत अंदालकर ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। लेकिन उधर अहलावत की बात करें तो वो महिलाओं की 62 किलोग्राम भार वर्ग में पदक से चूक गए। रेपेचाज में मानसी अहलावत का मुकाबला मंगोलिया के पहलवान से था। आते ही जब मैट पर वो आई, 2-0 से पिछड़ गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की, 2-2 की बराबरी भी की, लेकिन अंतिम कुछ सेकेंड्स में अपने नियंत्रण में इस मुकाबले को नहीं रख सकी और 2 अंक गंवाए, जिसकी वजह से उनको ये मुकाबला मानसी अहलावत को 2-4 से गंवाना पड़ा।
2: Right, in the world of golf, India's Pranavi Urs was in the second place in the women's individual stroke play after 2 rounds, carding 11 under 129 to set 2 strokes behind leader Shannon Juan Yin Tan of Singapore. Vahi Deeksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are presently third in the team standings behind China and Singapore.
3: और उधर हॉकी में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई। गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा। भारत ने मैच के 23वें मिनट तक 3-0 की बढ़त बना ली थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अगले 26 मिनट में 3 गोल कर मैच 3-3 से बराबर कर दिया। 59 मिनट तक मैच बराबरी पर था। फाइनल हुटर बजने से करीब 50 सेकंड पहले अभिषेक ने फील्ड गोल कर भारत को जीत दिला दी और भारत के लिए गोल किया हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर। फिर उन्होंने ही 13वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दूसरा गोल किया। सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट में गोल किया। अभिषेक ने 60वें मिनट में गोल किया। पाकिस्तान के लिए अबू महमूद ने 30वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। हन्नान शाहिद ने 45वें मिनट में गोल किया। वहीद राणा ने 49वें मिनट में गोल किया, और इस तरह से यह मुकाबला भारत ने अपने नाम 4-3 से कर लिया।
2: जी, एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम रग्बी सेवन्स, वेयर इंडियन वुमेन्स रग्बी सेवन्स टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव, दुमुनी मर्दनी मर्द मदनी, संध्या राय, मामा नायक, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मल्या राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगी. टीम हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द 2026 एशियन गेम्स, सफरिंग टू हेवी डिपीट्स इन पूल बी, पूल ई इन सम क्लासिफिकेशन एट द पलोमा मिजूर रग्बी स्टेडियम. मैच वन इंडिया एंड हांगकांग, दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड हांगकांग. इंडिया फिनिश्ड at 7 points while Hong Kong at 33 points, and then the match 2, India lost to China 5-43. A tough day for the Indian women's rugby sevens team.
3: और मेडल टैली पर भी एक निगाह अगर डालें तो भारत अभी भी 8वें स्थान पर है. 10 स्वर्ण पदक जीते हैं अभी तक, 22 रजत पदक और 32 कांस्य

0: गेम्स 2026 के ताजा अपडेट्स का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
0: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और दोस्तों मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है धर्मेंद्र। हम लेकर आ गए हैं शाम के 6:30 द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम जूडो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर देयर इज मिक्स्ड न्यूज फॉर इंडिया इन जूडो विद यामिनी मौर्या लूजिंग हर वुमेन्स 57 किलोग्राम्स क्वार्टर फाइनल टू मंगोलियाज अर्युन ज़िया थर्बिश बाय यूको। यामिनी नाउ मूव्स इनटू द रिपेचार्ज वेयर शी विल फेस जापान्स मियो शिराकने फॉर अ place in the bronze medal match. Meanwhile, Inon Ganbi Takalambam advanced to the women's 70 kg quarterfinals after beating Nepal's Poonam Shresth by Ippo. She will next take on North Korea's Moon Song Hui.
2: और हॉकी में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में

0: पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई। गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। और हम आपको बताएं कि भारत ने मैच के 23वें मिनट तक 3-0 की बढ़त बना ली थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अगले 26 मिनट में 3 गोल कर मैच 3-3 से बराबर कर दिया। 59 मिनट तक मैच बराबरी पर था। फाइनल हूटर बजने से करीब 50 सेकंड पहले अभिषेक ने फील्ड गोल कर भारत को जीत दिला दी। और अगर इस मुकाबले में गोल की बात करें तो भारत की तरफ से जो 4 गोल हुए उसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से 2 गोल किए 5वें और 13वें मिनट में, सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट में गोल किया और अभिषेक ने 60वें मिनट में गोल किया। पाकिस्तान के लिए अबू महमूद ने 30वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया, हन्नान शाहिद ने 45वें मिनट में गोल किया और वहीद राणा ने 49वें मिनट में गोल किया।
1: Right, now let's move on to sailing, where India got a very good news at the start of the day today, where they secured their first sailing medal at the Asian Games with Manu Francis and Prince Kursinkal Noble winning the silver in the men's skiff event. The Indian pair finished second with 23 net points and 29 total points after 9 races, behind gold medalist China, who finished on 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold, while Hong Kong took the bronze medal.
0: और क्रिकेट में मेंस कैटेगरी के फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में आज श्रीलंका को आसानी से 124 रन के बड़े अंतर से हराकर गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाई। इस सेमीफाइनल मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए थे। भारत के लिए ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। पाकिस्तान ने उधर पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया और फाइनल के लिए टिकट कटाया।
1: जी, और अब गोल्फ की दुनिया से भी कुछ खबरें आपको लेकर देते हैं अपडेट्स के तौर पर। इंडिया प्रणव यूर्स वॉज इन द सेकंड प्लेस इन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले आफ्टर 2 राउंड्स, कार्डिंग 11 under 129 टू सेट 2 स्ट्रोक्स बिहाइंड लीडर शैनन जुआन जिन टैन ऑफ सिंगापुर। दीक्षा डागर वॉज टाइड 21st एट 4 over 144, वाइल आदिति अशोक वॉज टाइड 25th एट 5 over 145। इंडिया वर थर्ड इन द टीम स्टैंडिंग्स बिहाइंड चाइना एंड सिंगापुर।
0: और अगर हम बात करें आगे कुछ और खेलों की, तो तीरंदाजी से भी भारत के लिए आज बेहद अच्छी खबर आई और भारत ने 4th मेडल जीता। कल के 3 गोल्ड के बाद आज गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के कंपाउंड इंडिविजुअल के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उन्होंने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 के स्कोर से हराया। यह एशियन गेम्स में 20 वर्षीय मणि का दूसरा मेडल है। उधर सेपेक्टेक्रा के मेंस क्वाड्रेंट इवेंट में मेडल पक्का हो गया है। भारत ने आखिरी ग्रुप मैच में म्यांमार को 2-1 से हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया ने ग्रुप के 3 मैच जीते और अजय रहते हुए ग्रुप में टॉप किया।
1: राइट, मूविंग ऑन टू टाइक्वांडो, इंडियाज कैंपेन इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पोम्से इवेंट इन टाइक्वांडो एंडेड एज रूपा बेयर बोर्ड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। And finally, to sum up this latest update, we shall be also giving you the medal table and also telling all our listeners as to where is India presently standing on the medals table. So presently, the Indian team stands on the 8th spot with a total of 64 medals, which includes 10 gold, 22 silver and 32 bronze. On that note, फिलहाल के लिए वक्त हो गया है मुझे यानी साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को इजाजत देने का। हम आपसे एक बार फिर से आज के दिन की आखिरी अपडेट लेकर मिलेंगे शाम के 7:30 बजे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: नजारा फिल्मों का।

सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता की दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी आरजे फ्रेंड सिलेक्शना पर्वत, जो तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती है, खैर मकदम करती है, वेलकम करती है। और ऐसा है दोस्तों कि अगर शाम की बात करें और वो भी म्यूजिकली योर्स पर, तो जाहिर सी बात है एक ही नाम सबके दिमाग में होता है, 7 से लेकर 9 आपके लिए रहता है आपका पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छाया लोक। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज थर्सडे है, तो थर्सडे की शाम आपके लिए रहता है ना नज़ारा फिल्मों का। तो शुरुआत सोच रही हूँ क्यों ना हम दोस्ती से करें, क्योंकि हम और आप जुड़ते भी हैं, वो भी दिल से दिल तक, और हमारे और आपके बीच जो दोस्ती है वो हर रोज़ और ज़्यादा गहरी होते जाती है। और बताना चाहूँगी आपको फिल्म शोले से संबंधित, जी हाँ समझ ही गए होंगे, ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1975, प्रसिद्ध गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मुख्य रूप से अगर हम इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक की सड़कों और उसके पास स्थित प्रसिद्ध डोडा अल्तामारा बिग बैनियन ट्री, बड़ा बरगद का पेड़ के आसपास फिल्माया गया था। और इस गाने से जुड़ी कुछ बातें अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि बेंगलुरु शहर के सड़कें और लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित 400 से 500 साल पुराना बरगद का बड़ा पेड़, और शूटिंग का समय अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र पर जो है ये फिल्माया गया था। और इस आइकॉनिक गाने की तैयारी और शूटिंग में लगभग 21 दिन लगे थे। तो चलिए देर ना करते हुए सुनते हैं ये गाना।

क्यों, क्या कहते हैं, हमारी और आपकी दोस्ती की रंगत और थोड़ी खुशबूदार हो गई ना। अच्छा, यही बात तो होता है जब आप जुड़ते हैं म्यूजिकली योर्स के साथ। हम और आप जुड़ते हैं दिल से दिल तक। और ऐसा है कि

होगा कि जर्नी सॉन्ग की बात कर रही हूं, तो ये पीकू फिल्म का गाना है। और इस गाने को कहां कहां फिल्माया गया था, मतलब पिक्चराइज किया गया था, लोकेशन क्या है, जरा उससे संबंधित भी कुछ बातें बता दूं ताकि और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। बात यह है कि मुख्य रूप से गुजरात में इसकी शूटिंग हुई थी, गुजरात के हाईवे। गाने के अधिकतर हिस्से अहमदाबाद से भुज को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर शूट किया गया था। सुरेंद्रनगर गुजरात में है। गुजरात शेड्यूल के दौरान फिल्म के मुख्य कलाकार अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान खान सुरेंद्रनगर जिले के पटडी और ध्रुंगद्रा इलाके में शूटिंग के लिए पहुंचे थे। दिल्ली और कोलकाता रूट्स की बात करूं तो चूंकि ये एक रोड ट्रिप सॉन्ग है जो दिल्ली से कोलकाता के सफर को दिखाता है, इसलिए इसके कुछ शुरुआती और आखिरी जो सीन्स थे वो दिल्ली, गुड़गांव और कोलकाता, उत्तर कोलकाता की सड़कों पर भी फिल्माए गए थे। क्यों, अब गाना सुनेंगे तो मजा डबल होने वाला है। श्रेया घोषाल और अनुपम रॉय की आवाज में इस गीत को सुनेंगे गीतकार संगीतकार अनुपम रॉय।

ऐसा है दोस्तों कि जब कार्यक्रम सुन रहे हैं छायालोक के अंतर्गत सेगमेंट नजारा फिल्मों का, तो क्यों ना मैं एक दो गाना, एक नहीं दो गाना सुनाऊंगी जिसकी शूटिंग हुई थी ट्रेन के छत पर, फिल्माया गया था। उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी फिल्म अजनबी के उस गाने के बारे में जिसके बोल हैं हम दोनों दो प्रेमी। ये जो फिल्म है 1974 में रिलीज हुई थी, इन द ईयर 1974, और ये गाना राजेश खन्ना और जीना दमान पर जो है मालगाड़ी की छत पर फिल्माया गया था, और पूरा का पूरा गाना जो है वो मालगाड़ी के छत पर ही था, मतलब मालगाड़ी, और बहुत ही खूबसूरत गाना है, रोमांटिक ट्रैक है। तो देर ना करते हुए क्यों ना वो गाना आप तक पहुंचाऊं। इस गीत को आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, और ऐसा है कि इस गीत को बड़े आनंद के साथ आनंद बख्शी ने कलमबद्ध किया है और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

क्यों मजा आया ना? अच्छा एक खास बात ये होती है ना कि अगर हम ट्रेन वाले गाने सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम सफर किए होते हैं ट्रेन में वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। अगर प्लेन की बात करूँ तो फिर प्लेन वाली बात याद आ जाती है। मतलब हम क्या करते हैं ना कि आपकी पुरानी खूबसूरत यादों को जो है ना तरोताज़ा करते रहते हैं, क्योंकि इसी में तो खुशियों का जो है वो पिटारा छुपा हुआ होता है, तो हम उस पिटारे को खोल देते हैं। वैसे बता दूं कि ट्रेन सॉन्ग की बात कर रही हूं और वो भी उन गानों के बारे में बताना चाहती हूं कि मतलब ट्रेन की छत पर फिल्माए गए जो प्रतिष्ठित गाने हैं, तो उनमें से भला 1998 में रिलीज हुई फिल्म दिल से का गाना कैसे ना सुनाऊं आपको, छैया छैया। और ये गाना सबसे आइकॉनिक भी माना जाता है उस फिल्म का, और इसमें शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा चलती ट्रेन की छत पर डांस करते नजर आते हैं। हाँ जी, इस गाने को सुनते सुनते अगर आपको भी डांस करने की इच्छा हो तो बिल्कुल करिए। वैसे भी डांस करने से ना फील गुड का एहसास होता है, ठीक वैसे ही जैसे आप म्यूजिकली योर्स पर जब प्रोग्राम सुनते हैं, ठीक वैसा ही।

इस गीत को आपने सुना सुखविंदर और सपना अवस्थी की आवाज में, गुलजार ने कलमबद्ध किया, ए आर रहमान ने संगीतबद्ध किया, फिल्म का नाम दिल सिरे। और ऐसा है दोस्तों कि 7:30 बजे से आप सुनेंगे पीरियोडिक अपडेट्स जुड़ा हुआ 2026 के एशियन गेम्स से संबंधित।

KBS 아이티 나보야. नमस्कार 20वें एशियन गेम्स के 12वें दिन के खेल की अंतिम अपडेट के साथ मैं हूं धर्मेंद्र और मेरे साथ हैं साक्षी मंडवार। आईटी नागोया में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। कोई गोल्ड आज टीम के हाथ नहीं लगा, हालांकि 5 मेडल जीतने में सफलता जरूर मिली। दिन का सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन कुश्ती की ग्रीको रोमन शैली में रहा, जहां नितेश सिवाच ने फाइनल में जगह बनाई। भारत का कोई पहलवान 64 साल

0: जाएगा।
1: जी और सेलिंग की दुनिया में अगर बात करें तो वहाँ से भी आज सुबह हमें खुशखबरी मिली, बिकॉज इंडिया सिक्योर द फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस पुरी से निकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेंस स्किप इवेंट। द इंडियन पेयर फिनिश सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 नेट पॉइंट्स। हांगकांग टुक द थर्ड स्पॉट थेरबाय रैपिंग अप विद द ब्रॉन्ज मेडल फॉर देमसेल्व्स।
0: और तीरंदाजी में जहां कल हमारी टीम ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे वहीं आज एक ब्रॉन्ज मेडल मिला। कंपाउंड मेंस इवेंट में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक मुकाबले में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 के अंतर से हराया। ये एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है।
1: जी स्क्वाश की दुनिया में भी आज भारतीय मेन को डेफिनेटली ब्रॉन्ज मेडल मिला, और अगर हम बात करें महिलाओं की तरफ भी तो वहां पर भी द इंडियन वुमेन्स टीम वेंट डाउन 1-2 टू हांगकांग इन द वुमेन्स टीम सेमीफाइनल एंड हैड टू सेटल इन फॉर द ब्रॉन्ज। अगर मेन्स की बात करें तो वहां पर हमने देखा कि इन द फर्स्ट मैच इंडिया लॉस्ट द ओपनिंग मैच ऑफ द मेन्स टीम सेमीफाइनल विद अभय सिंह गोइंग डाउन 0-3 टू इयान यो एनजी। उसके बाद सेकेंड गेम में वीर चौटरानी बीट संजय जीवा 3-0 टू ब्रिंग इंडिया लेवल 1-1 एंड फाइनली बी सेंथिल कुमार लॉस्ट 1-4 टू अमीशन राज चंदरन इन द डिसाइडिंग मैच ऑफ द मेन्स टीम सेमीफाइनल एंड thereby इंडियन मेन्स टीम इन स्क्वाश हैड टू ऑल्सो सेटल विद ब्रॉन्ज एंड द वुमेन्स स्क्वाश टीम ऑफ कोर्स सेटल्ड इन विद द ब्रॉन्ज एट द अर्ली पार्ट ऑफ द डे।
0: उधर हॉकी में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई। गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना मलेशिया से होगा। और हम आपको बताएं कि भारत ने मैच के 23वें मिनट तक 3-0 की बढ़त बना ली थी। उसके बाद पाकिस्तान ने जोरदार वापसी की और अगले 26 मिनट में 3 गोल कर मैच 3-3 से बराबर कर दिया। 59 मिनट तक मैच बराबरी पर था। फाइनल हुटर बजने से करीब 50 सेकंड पहले अभिषेक ने फील्ड गोल कर भारत को जीत दिला दी। और पुरुष हॉकी में अगर हम बात करते हैं तो भारत ने एशियन गेम्स में 4 गोल्ड 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अब तक जीते हैं।
1: Right, and in cricket also we have some good news to give you, where Indian men's cricket team defeated Sri Lanka today in the semi-final by a huge margin of 124 runs. India, having been put into bat first, posted a total of 169 for the loss of 7 wickets in 20 overs, whereas Sri Lanka in that chase of making 170 got bundled out for a paltry 45 runs. Now the Indian men's team will be up for the final clash against Pakistan, who defeated Bangladesh also in the semi-finals today and then moved on towards the finals. ये final का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को आपको देखने को मिलेगा।
0: और सेपक ठकरा के मेंस क्वाड्रेंट इवेंट में मेडल भारत के लिए पक्का हो गया। भारत ने आखिरी ग्रुप मैच में म्यांमार को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और टीम इंडिया ने ग्रुप के 3 मैच जीते और अजेय रहते हुए ग्रुप में टॉप किया।
1: जी वही ताइक्वांडो की दुनिया से अगर आपको कुछ खबर दे तो वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी खबर हम आपको नहीं दे पाएंगे, बिकॉज भारत का सफर इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्जे इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड टुडे एज रूपा बेओर बोड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल।
0: और शूटिंग से भी अच्छी खबर नहीं है। मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल में भारत के अनीश भानवाला 7वें स्थान पर रहे। इसके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान खत्म हो गया है। अनीश ने एक और सीरीज में 5 में से 4 हिट किए। उनके कुल 15 शॉट में से 11 हिट रहे। इस स्कोर के साथ वे तीसरे स्थान के लिए बराबरी पर थे। हालांकि टाई होने पर क्वालिफिकेशन का स्कोर देखा गया। क्वालिफिकेशन में अनीश का स्कोर कम होने के कारण वे टाई ब्रेकर में पीछे रह गया और 7वें स्थान पर रहे। इसके साथ 3 गोल्ड 8 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 15 पदक जीतकर भारत का शूटिंग अभियान खत्म हो गया। भारत ने पिछले एशियन गेम्स के मुकाबले 4 स्वर्ण समेत 7 कम पदक जीते।
1: Right, in rugby sevens, the Indian women's rugby sevens team had a tough start on the opening day of the Aichi Nagoya 2026 Asian Games, suffering 2 heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizua Rugby Stadium. The first match, India lost to Hong Kong China 7-33, and the second match, India lost to Republic People's Republic of China 5-33. 43।
0: जी और वॉलीबॉल में भी अच्छी खबर नहीं रही, पाकिस्तान के हाथों भारत को 3-0 से शिकस्त मिली और भारत का अभियान वॉलीबॉल में भी समाप्त हो गया है।
1: राइट, विद दिस टू क्विकली सम अप हाउ इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टेबल टुडे बाय द एंड ऑफ द डे। वेल, इंडिया इज स्टैंडिंग प्रेजेंटली ऑन द 8th स्पॉट विद अ टोटल ऑफ 64 मेडल्स व्हिच इंक्लूड्स 10 गोल्ड, 22 सिल्वर एंड 32 ब्रॉन्ज। लेट्स ऑल्सो टेल यू दैट ऑन द नंबर 1 स्पॉट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विद अ टोटल ऑफ 288 मेडल्स व्हिच इंक्लूड्स 154 गोल्ड मेडल्स। जापान इज अ नंबर 2 विद अ टोटल ऑफ 217 मेडल्स विद अ टोटल ऑफ 59 गोल्ड मेडल्स इन दैट। एंड ऑन द 3rd स्पॉट वी हैव रिपब्लिक ऑफ कोरिया विद अ टोटल ऑफ 113 मेडल्स जिसमें से 30 गोल्ड मेडल हैं, और भारत का स्थान अभी मेडल टेबल पर है 8वें स्थान पर। इसके साथ ही दोस्तों, फिलहाल के लिए धर्मेंद्र और मुझे साक्षी मांडवाल को आज के लिए दीजिए इजाजत। हम आपसे कल सुबह एक बार फिर 9:30 जुड़ेंगे विद ऑल द अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। फॉर द मोमेंट इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।
0: नमस्कार। एशियन गेम्स
2: जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना 20वें एशियन गेम्स 2026 का पीरियोडिक एफएम अपडेट्स, और वापस से हम जुड़ गए हैं अपने उसी कार्यक्रम में यानी कि म्यूजिकल एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम चायलोक सेगमेंट नजारा फिल्मों का। और जब हम सफर की बात कर रहे हैं, ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रेन के छत पर फिल्माए हुए गाने, ट्रेन के अंदर फिल्माए हुए गाने, कोई ट्रेन में है तो कोई कार में है और साइमल्टेनियसली पैरेलल वे में दोनों ही चल रहे हैं, अगर ये मैं कहूँ तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और बात ये है कि मैं जिक्र कर रही हूँ उस गीत की, गीत के बारे में, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। फिल्म आराधना, ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1969। ये सदाबहार गीत दार्जिलिंग की प्रसिद्ध टॉय ट्रेन के साथ फिल्माया गया था। इसमें राजेश खन्ना खुली जीप में गाते हैं और शर्मिला टैगोर ट्रेन के अंदर बैठी होती है। और चलिए अब देना करते वही गाना आप सभी के लिए प्ले करती हूँ।

0: दिया।
1: फिल्म आराधना से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को आपने सुना। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एसडी बर्मन। और अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए मैं जिक्र करना चाहूंगी उस गीत के बारे में। जी हाँ, ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2005 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, बंटी और बबली, याद आया, अभिषेक और रानी मुखर्जी। हाँ जी, धड़क धड़क वो गाना, फिल्म बंटी और बबली के इस गाने में अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ट्रेन के सफर के दौरान अपने सपनों को बयां करते हैं। तो चलिए सुनते हैं उनके सपनों के बारे में। वैसे बता दूं कि इस गीत को बड़े खूबसूरती से लिखा था गुलजार ने, लिखा है गुलजार ने, और संगीत का जादू है शंकर ईशान लॉय की, आवाज उदित नारायण, सुनिधि चौहान और नेहरा जोशी की।

क्यों दोस्तों, कैसा लगा? एकदम तरोताजा फील कर रहे ना? अजी यही तो मैजिक है म्यूजिकली योर्स का। जब आप कनेक्ट होते हैं म्यूजिकली योर्स से तो ऐसा ही होता है, बस फील गुड का एहसास होता है और सारे दिन का जो स्ट्रेस है ना वो उड़नछू हो जाता है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको वो गाना सुनवाना चाहूंगी, कस्तुमाजा। जी हाँ, परिणीता फिल्म तो याद होगा ही, ये फिल्म रिलीज हुई थी 2005 में और परिणीता का एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना था दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की ट्रेन, टॉय ट्रेन में सैफ अली खान और विद्या बालन पर फिल्माया गया था। और भला ये कहना कैसे भूल जाऊं कि उसमें ढेर सारे बच्चे थे, और कार्यक्रम कोई भी हो उसमें बच्चों का जिक्र तो होना ही चाहिए। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में,

शुरू की घड़ी में समय हो चला है 7:53:40 और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तो आपके साथ रहूंगी 8 बजे तक, यानी कि और 6-7 मिनट शेष बचे हैं हमारे और आपके बीच, और हमारे इस जर्नी को आगे बढ़ाना है, म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर छायालोक की जर्नी को। और ऐसे में अब समय हो चला है मेरे ये कहने का कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, अपनी आरजी दोस्त सुलक्षणा पर्वत को आज्ञा दीजिए, और हमेशा की तरह तो कहूंगी ही कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए, खिलाते रहिए। और चलते चलते मैं उस गाने को जरूर आप तक पहुंचाना चाहूंगी जिस गाने में जीवन के फलसफे भी हैं और ट्रेन का भी जिक्र है। तो नजारा ट्रेन वाला, गाने में फलसफे और क्या, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, अब मेरे जाने का भी वक्त हो चला है। तो टाटा बाय बाय, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 107 FM रेनबो पर एक बार फिर हाजिर है आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका, जो लेकर आया है कार्यक्रम छायालोक।

दोस्तों बहुत पहचान लिया आपने, अब नहीं पहचानना है कि मैं कौन हूँ आपके साथ। फिलहाल तो आपको नंबर डायल करना है 2213-1341 और आना है अपने दिल की बातें लेकर और साथ में अपनी फरमाइश लेकर। नंबर एक बार फिर से याद रखिए, नंबर है हमारा 2213-1341। क्यों, याद रहेगा ना?

0: चलिए दोस्तों, कॉलर फ्रेंड आ गए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ हो कहना चाहते हैं।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो, हम चिचुरा से अशोक पर बोल रहा है।
0: बोलिए।
1: हाँ, आप ठीक है ना सर?
0: हम तो अच्छे हैं, बताइए।
1: हाँ बताइए, हम भी अच्छा है। सब आदमी अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छा है। पूजा करवा भी

0: दुर्गा माँ पूजा है और हमको गाना सुनाइए धर्मात्मा से तेरे चेहरे में हो जादू है।
1: अच्छा ये गाना क्या आप मतलब पहले से बचपन से आपको पसंद है कि लाइफ से?
0: क्या अभी अभी तो उम्र हो गया साल पहले देखता था हम पुराना फिल्म तो गा।
1: ओके।

0: गुनगुनाया क्या?
1: आपका दिल करता है तो गुनगुनाइए।
0: तेरे चेहरों में हो जादू है, तेरी ओ चला जाता हूँ। अरे बोला, वॉइस हो गया ना होगा, अभी आता नहीं है गाना।

वैसे दोस्तों यहाँ चेहरे के जादू से काम नहीं चलने वाला, यहाँ तो आपको नंबर डायल करना पड़ेगा और अपनी फरमाइश और अपने दिल की बातें लेकर आना होगा। नंबर है हमारा 2213-1341। कार्यक्रम चल रहा है छायालोक और मैं हूँ आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरार का। आइए फटाफट नंबर डायल कीजिए और फिलहाल चांद सिफारिश आपके लिए।

0: चलिए दोस्तों देखते हैं 2213-1341 पर कोई कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं, उनसे बातें कर लेते हैं।
1: भैया जी नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार।
1: भैया जी हम पूर्व वर्धमान बुधबुद से प्रवीण कुमार मंडल बोल रहा हूँ।
2: अरे प्रवीण जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है भैया जी। आपका जुआ से कहे कि आप जो गाना सुना रहे हैं ना, मैं सीधा हो गया। तो उसी लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो।
2: अरे किस पे फिदा हो गया ये तो बताइए।
1: ये गाना जो सुन रहा है ना मैं, इसके लिए आपका भाभी भी सुन रहा है गाना।
2: अच्छा।
1: तो इसमें बहुत मैंने आनंद आ रहा है।
2: क्या बात है।
1: हम लोग फिदा हो गया, आपका गाना सुना रहा है। आपका मैंने जितना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है भैया जी।
2: मतलब

0: गाना सुन के गाने पर आप लोग फिदा हो गए, ये तो
1: एकदम एकदम एकदम
0: क्या बात है।
1: उसके बाद आपका बात भी बहुत भैया मैंने बढ़िया लग रहा है, जो आप कैसा बोल रहा है कैसा सुना रहा है ये भी बात आपका बहुत बधाई हो भैया जी।
0: अच्छा।
1: हमको डॉन फिल्म का वो खाई के पान बनारस वाला गाना सुना दीजिए। हाँ अभी खाना खुना खा के पान खा के बढ़िया हो जाएंगे और ज्यादा।
0: खाना खा लिया आपने?
1: नहीं खाया नहीं, खाऊंगा।
0: तो पहले पान खा लेते
1: हैं?
0: पहले पान?
1: हाँ पहले पान।
0: अच्छा एक काम करते हैं, पान खिला देते हैं आपको, है ना?
1: हाँ हाँ हाँ हाँ भैया जी।
0: हाँ।
1: नमस्कार नमस्कार, अच्छा रहिएगा।
0: अच्छा लेकिन आज आपने पूरा मतलब खोल के रखा था ना, खाली तारीफ करते जाना है ना?
1: हाँ एकदम एकदम एकदम, काहे कि आपको बहुत अच्छा लगा भैया आपका प्रोग्राम सुन के।
0: अभी तो स्टार्टिंग हुआ है भाई, अभी तो आधे घंटा और मैं हूँ।
1: हाँ ना ठीक है, मैं सुन रहा हूँ भैया। ठीक है नमस्कार
0: नमस्कार।
2: रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए, आ आहा।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

दोस्तों, आप भी चाहते हैं प्रोग्राम में आना, अपने दिल की बातें लेकर आना और अपने मन की फरमाइश लेकर आना, तो आइए नंबर डायल कीजिए 2213-1341। 9 बजे तक आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा है।

0: वीकेंड आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक अपने रेडियो वाले दोस्त रोशन मुरारका के साथ। फिलहाल कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं, आइए उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: रोशन भाई, मेरा नाम गुलाम अली उलवरिया से बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है बताइए।
1: और हम पुराना फिल्म का गाना सुने लैला मजनू।
0: क्या बात है, पुराना फिल्म का गाना क्यों सुनना चाहते हैं, कुछ बताइए।
1: मैं तो पुराना नया गाना कोई सुनता नहीं, मैं पुराना गाना सुनता।
0: मतलब आदमी पुराने हैं इसलिए पुराना गाना सुनना चाहते हैं कि आदमी नए हैं लेकिन पुराना गाना सुनना चाहते हैं।
1: मेरा तो उम्र हो गया 52 साल हो, उम्र हो गया।
0: नहीं नहीं, वो आपकी उम्र में मैं नहीं जानना चाहता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप आदमी पुराने हैं इसलिए नया गाना सुनना चाहते हैं या आदमी नए हैं इसलिए पुराना गाना सुनना चाहते हैं।
1: पुराना आदमी।
0: पुराना आदमी, चलिए ठीक है। और बताइए
1: सब बोलिए, घर का हाल
0: सब ठीक है, सुना दे आपको गाना।
1: हाँ
0: ठीक, चलिए थैंक यू।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: ज्यादा वफादार है। हप हप खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।